आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स एंड सिनेमा जगत से। आज एक और मेगा ऑफिशियल अपडेट आया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि बहुत अच्छी अच्छी अपडेट सुनने मिल रही है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की महाबजट फिल्म रामायणा पार्ट वन की वर्ल्ड वाइड थिएटर रिलीज डेट आधिकारिक तौर पर इसी साल 6 नवंबर 2026 को दिवाली के ठीक दो दिन पहले के लिए लॉक कर दी गई है। सोनी पिक्चर्स ने इसका ऑफिशियल ऐलान इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए इंग्लिश डब ट्रेलर के साथ किया है। यानी इस साल दिवाली पर रणबीर कपूर राम और यश रावण के रूप में थिएटर्स में अब तक का सबसे बड़ा सिनेमाई इतिहास रचने जा रहे हैं। दिवाली का इंतजार अब और मुश्किल हो गया है क्योंकि पिक्चर का ट्रेलर जैसे ही सामने आया तो पिक्चर से एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। जिस तरह के VFX यूज करे हैं एंड यश का जो लुक है रावण का वो काफी अधिक चर्चा में है। बने रहिएगा।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारपणी वाला नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिल का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। आजकल हर जगह रिमिक्स का शोर है, लेकिन जो बात ओरिजिनल गानों के वर्क में थी वो बात आजकल के इस लूप के ज़माने में कहाँ। पुराने ज़माने में जो म्यूजिशियन लोग हुआ करते थे वो अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे एंड उसके बाद सिंगर जो है वो इमोशनली गाने में वो इमोशन प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आजकल के इस लूप के दुनिया में, हिप हॉप की दुनिया में, ऐसा फीलिंग कम ही देखने मिलता है। एंड अभी रिसेंटली एक गाना आया है, मुझको राणा जी माफ़ करना, इसका 2.0 वर्जन आपने सुना होगा, देखा होगा। तो गाने का म्यूज़िक तो सही है, लेकिन जो पुराने गायक गाने की वाइब थी, जो कोरस था वो गुपचुप गुपचुप, सो लाइक इट्स लाइक दैट, जो कोरस था वो कोरस आज भी आइकॉनिक बन चुका है। लेकिन वही ना यार, जो रिमिक्स के ज़माने में गाने का मज़ा है वो कई हद तक मुझे कम लगता है।

आपने एंजॉय किया ये गाना एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नारायणपुरी 101.9। नाइट्स रात के लगभग 9 बज चुके हैं, बाहर ठंडी हवाएं चल रही है और इस खूबसूरत शनिवार की रात में चलिए आपको दोस्ती की एक बेहद रूहानी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है राहुल की, जो सालों बाद अपनी बड़ी आईटी नौकरी छोड़कर वापस अपने पुराने शहर आया था। जब वो अपनी पुरानी कॉलेज की चाय की टपरी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ उसका कॉलेज का सबसे जिगरी दोस्त अमित बैठा था, जो अब शहर का एक मामूली टीचर था। राहुल को लगा कि दोनों की लाइफस्टाइल में इतना अंतर आने के बाद शायद बात करने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अमित की नज़र राहुल पर पड़ी उसने बिना किसी झिझक के वही पुराना कॉलेज का निकनेम चिल्लाया और उसे गले लगा लिया। उस 10 रुपए की कुल्लड़ वाली चाय के सामने राहुल के लाखों के पैकेज का घमंड पल में पिघल गया। दोस्तों, सच्ची दोस्ती कभी आपके बैंक बैलेंस या ओहदे को देखकर नहीं बदली जाती। आरटीपी की इस बिजी लाइफ में अगर आप भी अपने पुराने दोस्तों को भूल चुके हैं तो इस वीकेंड उन्हें एक कॉल कीजिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्वाणा नाइट्स। अभी जो चाय की टपरी वाली कहानी मैंने आपको सुनाई, सच बताना क्या आपको भी अपने उस पुराने कॉलेज या स्कूल के दोस्त की याद आई या नहीं? जिंदगी में हम कितने भी व्यस्त हो जाए, जो सुकून पुराने दोस्तों के साथ बेमतलब की बातें करने में है वो इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। इसी खूबसूरत एहसास पर निदा फाजली साहब का एक बेहद मशहूर शेर आपके लिए पेश कर रहा हूँ। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या न मिले हाथ बढ़ा कर तो देखो। हाथ बढ़ाना ज़रूरी है, अगर आप आगे हाथ बढ़ाते हैं तो हर रिश्ता एक नया रिश्ता कहलाता है। और बाद में फिर ये मत कहना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि हाथ बढ़ाना ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं सोचना है कि वो सॉरी कहेगा या मैं सॉरी कहूँगा। हाथ बढ़ा कर देखो, रिश्ता अपने आप बढ़ जाएगा। सुनते हैं अगला।

चलिए थोड़े वीकेंड फन पर वापस आते हैं। अगर आप आज शनिवार रात को अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ कुछ बेहद यूनिक और मिस्टीरियस करने का प्लान कर रहे हो तो रैले के रेड बर्ड वेन्यू पर आज रात ठीक 7 बजे से एक शानदार इंटरैक्टिव मर्डर मिस्ट्री डिनर एक्सपीरियंस शुरू हो चुका है। एक कैसीनो ग्लैमर थीम पर बेस्ड है एंड जहाँ पर आप मील एंजॉय कर सकते हैं और हाई स्ट्रेक्स मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। इसी यारों की महफिल और जो भी मतलब थ्रिलर आप अनुभव करेंगे वो एक नया अनुभव रह सकता है। हमेशा वही लॉन्ग ड्राइव पे जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना या फिर ऐसे घर पे बैठ के आराम फरमाना, ये तो होते रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ होने वाली है ना, ये बहुत यूनिक रहने वाली है। अगर आपको भी ऐसे मिस्टीरियस और थ्रिलर चीज़ें पसंद है तो डेफिनेटली आपने इस चीज़ का अनुभव करना चाहिए, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा और बाद में बोलेंगे यार काश वहाँ पे जाना चाहिए था। ये काश वाला वर्ड ना बड़ा यू नो हर्ट करने वाला होता है।

धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इस शांत माहौल में अक्सर हमें वो पुराने दिन याद आते हैं जब न ग्रीन कार्ड की चिंता थी, न टैक्स रिटर्न की टेंशन थी और ना ही मंडे मॉर्निंग की मीटिंग्स का खौफ था। सिर्फ एक साइकिल होती थी और पूरी शाम फ्रेंड्स के साथ घूमना होता था। ना फ्यूचर की चिंता थी, ना पैसे इन्वेस्ट करने का कोई टेंशन था, ना कुछ भी, मतलब बस यार लाइफ जो है वो मज़े में चल रही थी। 90s का वो दौर ही कुछ अलग था एंड 90s के हम वो कीड है जिन्होंने लैंडलाइन का फ़ोन भी देखा है, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट मोबाइल भी देखा है, देन स्मार्टफोन भी देखा है, देन iOS भी देखा है। सारी चीज़ें हमने देखी है तो हम ये जो डिफरेंस है वो रिलेट कर सकते हैं। और आपके दोस्तों के साथ अगर ऐसा कुछ आपका मोमेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड आपका जो मोमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो डेफिनेटली मैं ऑन एयर लाने की कोशिश करूँगा। एंड यार मौसम तो काफ़ी खूबसूरत है, इस खूबसूरत मौसम में एंजॉय करते हैं।

यह गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। हमारे उन लिसनर्स के लिए एक मजेदार म्यूजिक अपडेट जो अपनी गाड़ियों में वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं। इंटरनेशनल चार्ट्स पर आज एरियाना ग्रांडे का एक बिल्कुल नया पॉप ट्रैक पीटल ट्रेंड कर रहा है और शनिवार लेट नाइट ड्राइव के लिए इसकी बीट जो है वो लाजवाब है। तो अगर आप इस वक्त अपनी गाड़ी में घर की तरफ लौट रहे हैं तो अपनी वीकेंड में ये गाना जो है वो आपने डेफिनेटली सुनना चाहिए एंड आपके दोस्तों को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि जो बीट है ना वो अप टू द मार्क है। मतलब क्या ही कहूँ मैं आपको, ये बीट के बारे में तभी समझ में आएगा जब आप इसे प्ले करोगे। सो काफ़ी अच्छा है और ये वीकेंड में वेस्टर्न म्यूजिक के साथ इस तरह की बीट सुनना, इट्स लाइक सोने पर सुहागा। ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: रात के लगभग 9:30 बजने वाले हैं। शनिवार का जश्न अपनी जगह है, लेकिन एक जिम्मेदार आरजे होने के नाते आपको सुरक्षा की बात याद दिलाना मेरा फर्ज है। वीकेंड नाइट्स पर I-40 NC-147 और हाईवे 540 पर थोड़ा ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देर रात विजिबिलिटी में थोड़ा बदलाव आ सकता है, इसीलिए अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है वो कम रखिए और सामने वाले गाड़ी से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए। दूरी उन लोगों से भी बनाकर रखिए जो टॉक्सिक है। ये लोग ना जिना ऐसा कर डालते हैं कि मैं क्या बताऊँ। टॉक्सिक लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। लगता है कि आज ये सुधर जाएंगे, कल ये सुधर जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो इन टॉक्सिक लोगों से सावधान, इनके जाल में फंसिएगा मत। ये कभी सुधरने वाले नहीं है। अपने एंजॉय करते रहना चाहिए एंड एंजॉय करना चाहिए। अगला गाना बने रही
1: दूध उबालोगे उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्भर नाइट्स एंड में यही कह रहा था कैसे चल रही है आपकी सैटरडे की ये शाम। सैटरडे की शाम तो काफ़ी बेहतरीन चल रही है। मोस्टली सब लोग अपने घर वालों के साथ बढ़िया डिनर कर रहे हैं, अपने लव वंस के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड आज भी अगर वीकेंड आप आपके फैमिली के साथ विदा रहे हो तो खुश नसीब हो आप। पुराने ज़माने में मतलब 90s के किड रिलेट कर पाएंगे कि वीकेंड जब रहता था तो मस्त समोसे आते थे, गर्मा गर्म समोसे आते थे, उसके बाद जलेबी आती थी गर्मा गर्म। तो ये चीज़ें जो रहती थी उसी में ही लाइक हैप्पीनेस रहता था कि समोसे एंड जलेबियाँ घर पे आने वाली है क्योंकि आज वीकेंड है। तो आज के ये वीकेंड वाले ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद भी वो जो सेटिस्फैक्शन रहता है वो अभी भी नहीं मिलता है। जो मज़ा वो समोसे में एंड जलेबी में था एंड उसके बाद अगर मिर्चियाँ थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलती थी तो बात ही कुछ और होती थी।

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना।

आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना वाकई में था काफी बेहतरीन, जिसने सेट कर रखी है इस वीकेंड की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स, मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग, सात से दस में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाना नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे इस रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा एंड आपको मिल जाएगा हमारा ये रेडियो नायरा का एप्लीकेशन। ये डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक, एडवर्टाइजमेंट भी आप आपके बिजनेस की कर सकते हैं हमारे रेडियो नायरा पर। एंड कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड करना है, दैट्स इट। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो हमारे इस रेडियो नायरा को सुन सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका जो नेटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए। फिलहाल नेटवर्क तो सबके साथ आपका अच्छा है ही, क्योंकि वीकेंड जो चल रहा है, एंजॉय करते हैं अगला ही।

Well, enjoy किया आपने गाना एंड गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा और निर्वाणा नाइट सैंड। कैसे चल रही है आपकी सैटरडे की ये नाइट? मैं यही कह रहा था कि यार ये सैटरडे है एंड सैटरडे को भी कुछ लोग हैं जो मंडे का टेंशन लेते हैं। यार मंडे को तो टेंशन लेना ही है, तो मंडे के चक्कर में सैटरडे क्यों वेस्ट करना है? इसीलिए जो भी है मंडे का मंडे को देखा जाएगा, सॉर्ट आउट कर लेंगे, मोटिवेट रहेंगे, मेहनत कर लेंगे। डोंट वरी एट ऑल, मंडे की चीज़ मंडे पर डाल दो, लेकिन ये जो सैटरडे जा रहा है ना इसे तो एंजॉय करो यार। 7 से 10 का टाइम आप सब लोगों के साथ कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आप सभी को इसी शो पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा एंड गाड़ी के जो रफ्तार है उसे नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार सही तरीके से चल रही है तो आपकी गाड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन वही रफ्तार अगर सही नहीं चल रही तो यार है ना। तो इसीलिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ख्याल रखिए एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: छोरों को पीटना है कि इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे बस्सों में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तू जो भी कहेगी सब कराएंगे मम्मी,
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साढ़ भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

0: yes, yes. Say it again.
1: Yeah. नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of These Shockies.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: का स्वागत।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi, Pakka Loka.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉलवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 noon एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: मेरी आंखों की चमकती रोशनी, समा फरमाएं कि तेरी आंखें मेरी आंखों की चमकती रोशनी, आंख बंद हो तो अंधेरे में चला जाता हूं मैं। खातिनो हजरात, इंसान के चेहरे पर जो कुदरत ने आंखें बनाई हैं, आंखें दिल का खजाना निकाल कर सामने पेश कर देती हैं। प्यार की शुरुआत आंखों से शुरू होती है खातिनो हजरात, और ख़त्म होते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं या आंखें बंद हो जाती हैं। हकीकत है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। We are your host, Safroz Taj, John Caldwell and Ravi Chirikudi. 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। And this is Geet Bazaar Radio Naira की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: फरमाइशें एक से एक बेहतर आई हैं और बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं, जैसे कि ये फरमाइश आपने समझ फरमाई, चरणजीत लाल जी एंड कंचन लाल जी की फरमाइश थी एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से, और अगली फरमाइश ऑफ कोर्स ज्योति करीर की मॉरिसविल से। समाप्त फरमाइए इस शेर के साथ, जो खेल में शामिल हैं फिक्र जीतने की है। समाप्त फरमाएं कि जो खेल में शामिल हैं फिक्र जीतने की है, और है देखने वालों को मजा जीत हार का।
3: यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

हार डालिए गले में हार के। जो हारता है उसके गले में हार डालना चाहिए, यानी हार के गले में। हार डालिए गले में हार के, हार ना होती तो जीत ना होती। अभी आपने समाप्त फरमाया आनंद बख्शी का कलाम, आर डी बर्मन की मौसीकी, अपना देशवास 1972 की फिल्म थी, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ों के साथ। ज्योति करीर मोहतरमा की फरमाइश के साथ मॉरिसविल से ये नगमा आपने समाप्त फरमाया, और उससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया मजरू सुल्तानपुरी का कलाम, मदन मोहन की मौसीकी चिराग, वाज मेड इन 1969। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी ने अपनी फरमाइश भेजी एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से। और अब मोहतरमा फरीदा शेख की एक और बहुत खूबसूरत फरमाइश आई है, मुकेश की बर्थडे के मौके पर। अगेन कुदरत के करिश्मे में वो है राजदारी। समाप्त फरमाइएगा कि कुदरत के करिश्मे में वो है राजदारी, सोचो तो सोचने में लग जाए उम्र सारी।

ताल तलैया नदी से मिलके सागर से मिलवाए। देखिए सब ऐसा ही होता है कि ताल तलैया छोटी सी होती है, नदी से मिलके नदी जो है सागर में जाता है, लेकिन सवाल ये है कि वहां से क्या होता है ये किसी को नहीं पता। ताल तलैया नदी से मिलके सागर से मिलवाए, और अगर सागर मिल जाए राम से मोती कौन बनाए। इंदीवर का कलाम, रोशन की मौसीकी, अनोखी रात, अच्छी फिल्म थी 1968 की, नॉट बैड। मुकेश की आवाज़ में नाम समाज फरमाया। मोहतरमा फरीदा शेख साहबा की फरमाइश पर, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, जैसे कि ये कुत्सिया कासिम की फरमाइश आई है कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स से। नूर जहां की आवाज़, उनकी पसंदीदा आवाज़ है शाम का राग जो मुझे रुलाए सुबह ही करके जाए। समाज फरमाए कि शाम का राग जो मुझे रुलाए सुबह ही करके जाए, अलस सुबह जब सूरज आए आंसू भर के जाए।

आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, और सारी दुनिया के रंजो गम देके मुस्कुराने की बात करते हो।

इस जमाने में मुस्कुराती हो, अरे इस जमाने में मुस्कुराती हो, इतनी खुशियां कहां से लाती हो। ताबिश कानपुरी का कलाम था, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो उजलमी। आवाज थी मुन्नी बेगम की। इस वक्त तो मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा चपर हिल से एक और फरमाइश भेजने जा रही हैं। हम सोने को आए हैं, हम देख के सपने जाएंगे। अरे हम सोने को आए हैं, हम देख के सपने जाएंगे। आंख खुलेगी एक दिन अपनी, घर हम अपने जाएंगे।

जिंदगी कुछ भी नहीं, अरे जिंदगी कुछ भी नहीं, अंधे बशर का ख्वाब है। बशर कहते इंसान को। जिंदगी कुछ भी नहीं, अंधे बशर का ख्वाब है, आँख खुल जाए तो फिर कुछ नजर आता नहीं। खातिनो हजरात, जावेद अख्तर का कलाम था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी और तेजाब फिल्म 1988 में बनी थी, जिसका ये नगमा था। नितिन मुकेश की आवाज़ और शब्बीर कुमार की आवाज़ और अलका याग्निक की आवाज़। मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा की फरमाइश चैपल हिल से। अगली फरमाइश मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा ने भेजी है, अपनी पसंद जो हमेशा सबकी पसंद होती है, वो अपनी पसंद ऐसी ही भेजती हैं। और साथ साथ मैं शेर सुनाने से पहले यही शेर मोहतरम जनाब स्वर्गीय डॉक्टर गंगाधर शर्मा यानी अंकल जी की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं चला जाऊँगा लेकिन जिंदगी रह जाएगी। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि मैं चला जाऊँगा मेरी जिंदगी रह जाएगी और दोस्तों की महफिलों में जो कमी रह जाएगी।

खिलेंगे वफाओं के जब गुल चमन में, समात फरमाइएगा, ये भी शेर मेरा ही है। खिलेंगे वफाओं के जब गुल चमन में, तो हम बन के उतरेंगे खुशबू जहन में। मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम रोशन की मौसीकी, ममता वाजमेर 1966, मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा की फरमाइश पर। और अब मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की एक और कव्वाली बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही है, तो आइए साबरी ब्रदर्स को सुनते हैं। तुम्हारे दर पे भिखारी पड़े हैं बरसों से, अरे तुम्हारे दर पे भिखारी पड़े हैं बरसों से, हमारे प्यास का कूजा भरो अब अपनी नजरों से।

0: अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस नाम हाथ में आया है। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस नाम हाथ में आया है। और कौन है वो किस्मत के धनी जो राम हाथ में आया है। कलाम था मसरूर अनवर का, जफर खुर्शीद की मौसिकी थी, और जनाब वाला ये पाकिस्तानी फिल्मी कवाली थी 1965 की, जिसको बहुत मरतबा फिर बाद में पेश किया साबरी ब्रदर्स ने। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, इश्क़े हबीबी ये फिल्म का नाम था। 1965 की पाकिस्तानी फिल्म इश्क़े हबीबी की ये कवाली थी साबरी ब्रदर्स की आवाज़ों में, और मोहतरम जनाब चरणजीत रालियन मोहतरमा कंचन लाल जी ने इसकी फरमाइश भेजी। और अब मैं हमेशा की तरह से आपके लिए एक स्पेशल शेर लिखता हूँ जो आपको सुनाता हूँ। समात फरमाएं कि बातें करेंगे दो दो जालिम खिजां से फिर। समात फरमाइए कि बातें करेंगे दो दो जालिम खिजां से फिर। आगे बढ़ो बहार का मौसम है मुंतजर।
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: Tune up your spider sense because Spider-Man Night is here with the North Carolina Courage this Friday, July 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages, with Spider-Man themed activations, fun for the little ones, and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
3: You're listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

लचके दुपट्टे लहरिए हैं खूब जेबतन, लचके दुपट्टे लहरिए हैं खूब जेबतन, और हसरत जगा रहा है छन छन के ये बदन।

एक चांद घूमता है तारों को साथ लेकर, समझ फरमाएं, एक चांद घूमता है तारों को साथ लेकर, क्या खूब सजे तारे साड़ी के किनारों पर।

किसने कहा कि बांधिए पल्लू में मुरादें, अरे किसने कहा कि बांधिए पल्लू में मुरादें, पल्लू वजन के साथ बदन छोड़ रहा है।

पल्लू लटक रहा है चोली से यूं फिसल के। समा थरमाए कि पल्लू लटक रहा है चोली से यूं फिसल के, जैसे कि मोर कोई उतरा चमन से चल के।

0: पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे।
1: तेरे लिबास से मलमल को कुछ हवा लगे, समा फरमाइए, ये भी शैतानी से भरा हुआ ही शेर समझ लीजिए। तेरे लिबास मलमल को कुछ हवा लगे, क्या क्या है इसके पीछे कैसे पता लगे।
2: चुन्नी संभाल गोरी,

चुनरी है कासगंज की, भारी है पांच मन की। समाज फरमाए कि चुनरी है कासगंज की, भारी है पांच मन की, और मुल्तान का है लहंगा मेरे बदन से महंगा।

हमारी तरफ यानी कासगंज की तरफ जो ब्रज बोली जाती है उसमें महबूब को रसिया भी कहते हैं, और ये बहुत मशहूर गांव का या ये समझिए लोकगीत है जो फिल्म में आया आराम से, आगरे से घाघरा मंगा दे रसिया मैं तो मेला देखने जाऊंगी, और सब तो देखे मेला, मेला देखे मेरो घाघरा मंगा दे रसिया मैं तो मेला देखने जाऊंगी। और कहते हैं आगे, घाघरे के बीचों बीच ताज की तस्वीर हो, अरे घाघरे के बीचों बीच ताज की तस्वीर हो, और किनारे किनारे बहता जमुना जी का नीर हो, और जमुना जी में नैया हो और तुम जैसा खिवैया मंगा दे रसिया मैं तो मेला देखने जाऊंगी। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

पहनो न तंग कपड़े, आए बताने वाले। ऐसा ही लोग बताते हैं जब तंग कपड़े पहनने में लोगों को परेशानी होती है, आई गेस। पहनो ना तंग कपड़े, आए बताने वाले, तू खुद ही तंग दिल है, अरे ओ जमाने वाले।

न कर ली देखिए ससुराल हाथ में। अरे दूल्हे ने कर ली देखिए ससुराल हाथ में, एक हाथ में रुमाल तो एक माल हाथ में।

तरह तरह के रक्स जहां में, मुझको प्यारा बिस्मिल रक्स। अरे तरह तरह के रक्स जहां में और मुझको प्यारा बिस्मिल रक्स। मरते मरते मकतूलों से करवाए जो कातिल रक्स।

0: वो बोली मैं म्यूजिक लूंगी ना लूं कोई लफंगी डांस। वो बोली मैं म्यूजिक लूंगी ना लूं कोई लफंगी डांस, और म्यूजिक में रोमांस की बातें लूंगी का ना लूंगी डांस। खातिनो हजरात, जब हर तरह के कपड़े पहनकर डांस हो सकता है या हो रहा है, तो क्यों ना लूंगी पहनकर भी डांस किया जाए, एज लॉन्ग एज इसमें भी दिल को मोहने की बातें हों, अदाएं हों, आर्ट हो, कलाकारियां हों। कैसे कैसे नगमे आपने भेजे हैं, आपने हमारा पूरे तौर से दिल मोह लिया है, इसमें कोई शक नहीं। वी आर योर होस्ट अफरोज़ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरीकुड़ी। गीत बाजार आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा की पेशकश। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं। और अब हम चले, ये देखिए आपकी इजाज़त से, और चलते चलते राजकुमार सिन्हा की मेरठ से आई हुई फरमाइश सुनवाते हुए। और शर्त हमारी जाने की ये है कि इस शर्त पर चले हैं ना तुम हमको भूलना। अरे इस शर्त पर चले हैं ना तुम हमको भूलना, और जब भूल जाओ देखना एक फूल को मसल के। मोहब्बत जिंदाबाद।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा, ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue.

0: मॉरिसविल, कॉल करें 9842540111। रचा बंडा एक बार आए
1: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन। सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा।
1: अक्रॉस 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.
2: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3838.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: इतना आसान नहीं होगा। नहीं है जल्दी पिघलने वाली, तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेल फोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,

रैली दरम और पूरे आरटीपी एरिया को आपके होम टाउन स्टेशन पर संडे यानी रविवार की शाम के ठीक 7 बज चुके हैं एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आज पराग। उम्मीद है आप सबका ये वीकेंड बहुत ही रिफ्रेशिंग रहा होगा। कल शनिवार की पार्टियों के बाद आज की शाम थोड़ी काम, थोड़ी सुकून भरी और कल सुबह की मंडे के शिफ्ट के लिए खुद को तैयार करने वाली है। तो बॉस, अपनी गाड़ियों का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और आराम से बैक सीट पर रिलैक्स कीजिए, क्योंकि 7 से 10 मैं आता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। ये संडे का सफ़र म्यूजिकल और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी मेरी यानी सिर्फ मेरी है। आज शो में बहुत कुछ खास होने वाला है। रैली की कुछ ताज़ा खबरें हैं, बॉलीवुड गॉसिप है, एक प्यारी सी कहानी और शेर जो हमेशा आजकल हम लोग ट्रेंडिंग में ला रहे हैं, ये चीज़ भी रहने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड सुनते रहिएगा रेडियो

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
0: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
0: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
0: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online, or book catering services.

0: वेल एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी ब्यूटीफुल और जिसने सेट कर रखी है आज की संडे की वाइब। लैपटॉप शटडाउन करने की तैयारी कर रहे कॉर्पोरेट दोस्तों, मंडे आ रहा है लेकिन आज की संडे नाइट को पूरा निचोड़ लो। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। होम एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए आज एक बड़ा दिन रहा क्योंकि शेरेटन रैली होटल में चल रहे देश के सबसे बड़े होम एंटरटेनमेंट शो ऑडियो एडवाइज लाइव 2026 का ये आज आखिरी दिन था। वीकेंड भर यहाँ दुनिया के टॉप ब्रांड के लेटेस्ट लाउड स्पीकर और होम थिएटर एक्सपीरियंस देखने को मिले। अगर आप वहाँ नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, आपके होम थिएटर को रिबूट करने के लिए मैं यहाँ बेहतरीन म्यूजिक बना रहा हूँ। इसी फ्रेश मूड के साथ सुनते हैं अगला गाना एंड एंजॉय भी करते हैं अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, बने रहिएगा मेरे साथ एंड संडे की पार्टी तो चल रही है नायरा पर।
1: बोतल वोडका का मेरा रोस्टर, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। चार बोतल वोडका का मेरा

ओहो, मतलब क्या ही गाना था। ये गाने ने वाकई में संडे की वाइब पूरी तरह से सेट कर रखी है, एंड संडे को आपका मूड रिफ्रेश करने की जिम्मेदारी मेरी यानी सिर्फ मेरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। सप्ताह भर की भाग दौड़ और कल सुबह आने वाले मंडे की चिंता के बीच जो ये संडे की काम शांत वाली शाम होती है ना, ये खुद से बात करने का सबसे अच्छा वक्त होता है। इसी सुकून के नाम मेरा पहला पहला पहला शेर अर्ज है। थक गया है दिल इस शहर की भाग दौड़ से, थक गया है दिल इस शहर की भाग दौड़ से, चलो अब यादों की वादियों में शाम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वीकेंड जो है वो वीकेंड एंड होने वाला है, एंड वीकेंड जब एंड होता है तो ये समय काफ़ी खूबसूरत होना चाहिए। तो मंडे के इस टेंशन को लगाइए किनारे एंड एंजॉय कीजिए अगला गाना, क्योंकि म्यूजिक इज अ थेरेपी, जो मैं हमेशा कहता हूँ। एक बार आप म्यूजिक के साथ जुड़ जाओ देन बाकी के सारे टेंशन भूल जाओ। एंजॉय करते हैं।

0: शेर खुल गए।
1: रात के लगभग 8 बजने को आ रहे हैं और अब वक्त है सीधे माया नगरी का रुख करने का, जहां कल से लेकर आज तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है एंड नाम है रॉकिंग स्टार यश। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक अफेयर स्टाइल फॉर अ ग्रोन अप का ट्रेलर कल बेंगलुरु में लॉन्च हुआ था और आज यूट्यूब और सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ये ट्रेलर जो है वो ट्रेंड कर रहा है। कियारा आडवाणी के साथ यश का वो डार्क गैंगस्टर अवतार देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं बास। एंड इस फिल्म को इतना पसंद किया जा रहा है, ट्रेलर को इतना पसंद किया जा रहा है कि फिल्म इसी महीने 26 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। चलिए इस तगड़े भौकाल के बीच सुनते हैं अगला ये गाना। एंड टॉक्सिक का म्यूजिक भी काफ़ी चर्चा में रह रहा है, जिस तरह से म्यूजिक किया है, म्यूजिक कुछ यूनिक सा साउंड कर रहा है एंड BGM कैसे रहता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा।

सड़क पर चल रहे ड्राइवर जरा कान रेडियो के पास लाइए और ध्यान से सुनिए। आज ट्रायंगल एरिया के लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी और फ्रेश वेदर अपडेट आया है। मौसम विभाग ने आज शाम रैली डरहम और पूरे सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना के लिए एक ऑरेंज स्टॉर्म अलर्ट जारी किया है, जिसमें रात 10 बजे तक तेज आंधी, तूफान, बिजली कड़कने और भारी बारिश की गंभीर चेतावनी है। कुछ इलाकों में फ्लडिंग की संभावना है, तो अगर आप इस वक्त गाड़ी लेकर बाहर निकले हैं तो सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो सकती है, तो प्लीज अपने स्पीड को कम रखें और सुरक्षित जगहों पर रुकिए। चलिए इस वेदर अपडेट के बाद अभी एक अच्छा गाना एंजॉय करते हैं। लेकिन विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो सकती है, इसलिए गाड़ी भी आपकी अच्छी कंडीशन में होना काफ़ी ज़रूरी है। गाड़ी के फॉग लैम्प्स एंड गाड़ी के लाइट्स, हेडलाइट्स, सारे कुछ आप पहले ही चेक करके बाहर निकलिएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर सेफ्टी से रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय करते हैं।